0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है
3: Cool Song.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मधुर नैनी नार अलबे

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:08 हो रहे हैं। ये है बिंदास मॉर्निंग्स। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश,
0: और हम दोनों यहाँ पे बस्ता उठा के पहुँच चुके हैं आपके साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किससे खबरें कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। तो जी हाँ, यहाँ पे जो है कुर्सी की बेटी बांधो, ढंग से बांधो, ढंग से
1: बांध लिया। लेकिन व्हाट्स बस्ता ब्रो?
0: हाँ, बस्ता नहीं पता आपको? आए हाय बच्चे, ये कल के बच्चे क्या जाएंगे?
1: आई हैव हर्ड लाइक कंधे पे मेरा बस्ता, तो इज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी? और
0: बस्ता मीन्स बैग।
1: ओह
0: हाँ, हिंदी नहीं पढ़े हो क्या? नहीं पता था आपको बस्ता बैग है?
1: बैग नहीं बोलते?
0: अच्छा, अरे हाँ, भोपाल में तो बैग बोलते हैं।
1: राइट, हमारे यहाँ देखिए बैग को बैग ही कहा जाता है कि मैडम बैग ले लीजिए।
0: इससे मुझे याद आया, मेरा
1: बैग ले जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, ऐसे लेके जाइए, आप सो गए तीने ले जाइए।
0: बैग से मुझे याद आया था, मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट था जब मैं केरला में था, वो बैग पैंट इन सबको प्रोनाउंस करता बहुत डिफरेंट तरीके से। नहीं, वो बेग नहीं करता था। सी, हम तो केरला से, तो हमारा एक मदर टंग इन्फ्लुएंस रहता है, और वो कोटेम करके एक डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां का स्लैंग भी थोड़ा अलग है। तो वो बाग पांड ऐसे बोलता था। तो अगर उससे पूछना है कि अगर यार मेरा पैंट नहीं मिल रहा, तो बोलेगा कि एड़ा इन्हें पांड गाना इला, तो ऐसे बोलता था वो। तो मैं बोलता क्या गाना इला, क्या होता है?
1: गाइस, इस पर और बात करेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: दिन की शुरुआत की है, आप
0: शुरुआत ही की है
1: कि आप क्या प्रोनाउंस करते हैं किसको, और सुबह की इंटेंशंस बता दीजिए। जैसे सुदेव कहते हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या इंटेंशन है, ताकि हम भी थोड़े और मोटिवेट हो जाएं, ताकि आज के दिन वीकेंड से बस एक दिन पहले अच्छा काम कर पाएं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात कर दी यहाँ पे। और उसके साथ साथ देखिए, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये बात है कि वीकेंड के दिन
1: हम लोग
0: क्या करते हैं?
1: सोते हैं।
0: मैं वही बता रहा हूँ, मैंने जब पिछले हफ्ते हमें लॉन्ग वीकेंड जो मिला था, मैंने सोने की कोशिश करी, मैं पड़ा रहा, बट मैंने एक चीज रियलाइज की कि सिर्फ लेटने से या फिर फिजिकल रेस्ट से रिचार्ज नहीं होते। रिचार्ज करने के लिए क्या क्या चाहिए सब बताएंगे हम। अभी फिलहाल यहाँ पे गानों का सिलसिला शुरू करने का वक्त आ चुका है, तो थोड़ा आपको हम ग्लिम्स दे देते हैं कि आज भाई कौन से गाने प्ले होने वाले हैं। देखो बात तो सही है, जब तक आप बताओगे नहीं आप कौन, तो कैसे पता चलेगा?
1: Yes.
0: इंट्रो देना पड़ता है भाई।
1: Exactly.
0: आगे वाले को एग्जिस्टेंस का पता तो होना चाहिए ना। तो फिलोसॉफिकल गाने भी हैं साथ ही साथ, अंधा प्यार वाला गाना भी है।
1: Yes, I am 13.
0: ये है
1: तेरा हुआ।
0: ओह वाह, ओके, माइक बंद करता इसका तो। मगर एक पेपी गाना भी है। भाई जरूरी नहीं है जवानी हो तो ही इश्क हो, ठीक है? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जवानी में नहीं है फिर भी इश्क करने।
1: Yes, exactly. और सोने से इश्क तो खैर है,
0: क्या
1: मुझे नींद वाले सोने से भी एंड गोल्ड वाले सोने से भी।
0: Oh, yeah. बढ़िया। ये यार जून का महीना हो गया, वरना मैं तेरा बोल देता।
1: Nice.
0: कोई बात नहीं, अभी फिलहाल यही बात बोलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं, और अपने मैसेजेस आप तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी भेज दीजिए 3311063 पर। यहाँ पे है जवानी तो इश्क होना है, गाना सुनते हैं। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जियो विद अस।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: अरे भाई ठीक है यार, हो जा, मना नहीं किया किसी ने, मगर थम तो जा एक बार। ये ऐसे ही तेरा हुआ बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तेरे का वर्चस्व जो है वो यहाँ पे जमा हुआ है,
1: आधिपत्य है, चुका है।
0: बिल्कुल ये तेरा हुआ आने के बाद मैं तेरा हिलने नहीं वाला।
1: मुझे ऐसा लगता है कि हर 13th मई को ये लोग नया मैं तेरा वाला है, तेरा मैं वाला गाना वो जो है डालना चाहते हैं, ताकि कमी ना पड़े। देखो
0: कमी ना पड़े लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि लोगों को हमेशा उस लूप में फंसा के रखने का एक षड्यंत्र है। क्या बात
1: है, काफी सारे दोस्तों ने जो है पिछले मतलब 2025 के 13 मई पे भी सेम जो है रील डाली थी, रिपोस्ट कर दी। उनको लग रहा है कि यार कुछ तो नया देना पड़ेगा,
0: तो नया देना पड़ेगा, तो नया थोड़ा कुछ चाहिए, वो एक जो है नीड बन चुकी है। बट वही क्या करें, अभी करना क्या है, मैसेज पढ़ना है। मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था, सॉरी है। मैसेज आया है मेरुनिसा जी का, उन्होंने लिखा गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशी करके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और सभ्या साची जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग करके। ऋषीन का मैसेज आया है, ऋषीन ने एक फोटो भेजा है हमें, लिखा है ईच डे इज अ गिफ्ट, ओपन इट, सेलिब्रेट, एंजॉय इट, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। जुल्फी जी का मैसेज आया है और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा फोटो भेजा है जिसमें लिखा है नेवर फॉरगेट, नथिंग इज मोर पावरफुल देन प्रेयर, नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन फेथ, एंड नथिंग इज ग्रेटर देन गॉड, गुड मॉर्निंग करके। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, थैंक यू सो मच जी। और शशिकांत जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है देयर इज कलर एंड हैप्पीनेस इन सिंपल एवरीडे थिंग्स, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट नोटिसिंग देम, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नाजनीन जी का मैसेज भी आया है और लिखा है गुड मॉर्निंग, आई होप योर डे इज ऑफ टू अ ब्यूटीफुल स्टार्ट, फिल्ड विद सनशाइन, एंडलेस एनर्जी एंड फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। काफी प्यार भरा मोटिवेशन जो है आज हमें मिला है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ मैं बता दूं, थोड़ी देर में गानों के उस पार मैं और कशिश आएंगे एक सवाल करने के लिए, और परखने के लिए, जानने के लिए
1: कि आप
0: पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवी, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कशिश से कितने तेज है आज, इसलिए क्योंकि कशिश को सवाल नहीं पता।
1: मेरे को नहीं पता होता है, मतलब गिन के एक बार मेरे को पता होता है, तो उसमें भी मेरे को नाम बोलते नहीं बनता है,
0: कोई
1: फ्रेंच नाम हो जाता है,
0: कोई गल नहीं। अब देखो तनिषा के साथ घूम रहे हो, थोड़ा फ्रेंच भी सीख लो। कल मैं तनिषा से बात कर रहा था, मैंने बोला कि फ्रेंच आती है आपको, उसने बोला नहीं, जैसे मलयालम के साथ वो होता है ना मेरा रिश्ता, वही है फ्रेंच के साथ भी। मैंने बोला फिर ये खौस हो के इतना धौस के जमाते हो आप।
1: एग्जैक्टली, पर मुझे फ्रेंच बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज।
0: अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट के लिए बोलने वाला था कि मुझे तो बहुत ओवर रेटेड लैंग्वेज लगता है, बट कब बोले की जरूरत नहीं बड़ी खिला। यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अविनाश
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: एक चैलेंज देता हूँ कशिश मैडम।
1: नहीं मधु,
0: ये
1: सारा देखो, अगर मैं थोड़ी सुरीली होती तो क्या गाती,
0: क्या बात कर दी
1: मतलब आपने।
0: सब यही बोलते ना, अगर हम सुरीले तो
1: देखो
0: तो
1: मैं गाती बहुत अच्छा हूँ, बस मैं सुरीली नहीं।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करके हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं भी
1: ऑब्वियसली मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगी तो आप लोगों को गंदा गाना सुनने की आदत हो जाएगी।
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं सही में कह रहा हूँ, सही में कह रहा हूँ। कभी कभी लोग वैसे बोलते हैं कि नहीं गा सकते, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ी चीजें जो है तुम्हें जाननी होती है, चाहिए होती है, बट आवाज है आपके पास। You have a good voice, which means you should practice. If you practice, if you practice good enough, you will sing. Why? Simple है. But आज अभी जो है हम एक सवाल लेकर आए हैं यहाँ पे, और blackboard stories में वो सवाल पूछने का वक्त आ चुका है, तो शुरू कर दे मैडम।
1: Yes, करिए।
2: Radio All of presents blackboard stories.
0: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में सवाल बहुत सिंपल है, डेली बेसिस में इस चीज के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो सवाल सुनने बताने से पहले, पूछने से पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। सुबह सुबह जब भी हम निकलते हैं घर से बाहर, तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। और सनस्क्रीन लगाते वक्त हमने देखा होगा उसमें लिखा होगा SPF 100 या फिर SPF
1: 50,
0: ये सब देखा होगा। तो ये SPF का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, और तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप मैसेज कर दीजिए 3311063 पर कि SPF का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इन सबसे कितने तेज है, क्योंकि इस मामले में कशिश से तेज नहीं हो सकते भाई। सपने में भी नहीं।
1: मुझे नाइसिनामाइड, हाइलोरोनिक एसिड सब पता है, ठीक है।
0: लाइट की रफ्तार से भाग रही है आज कशिश जो है, इसके लिए स्पेस टाइम एक हो चुका है। और थोड़ा साइंटिफिक
1: अलग अलग होता है,
0: साइंस सिखा कर आते हैं हम, थोड़ा मैं भी देख कर आता हूँ कि गलत तो नहीं बोला मैंने। फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी ओ बिंदास।

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे बिंदास मॉर्निंग में ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में हमने एक सवाल पूछा था और अरे सॉरी मैं भूल गया मेरे साथ एक ऐसा ना करो दिल ना तोड़ो मेरा एक ही दिल है कितने बार तोड़ोगे सॉरी सॉरी चलो फिर से करते ठीक है अरे एक और चांस बनता है ठीक है ओके रेडी 3 2 1 मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कसर
0: यार वो मैं एक्साइटमेंट में आ गया था यार सॉरी बट या तो यहाँ पे जो है हमने एक सवाल पूछा था SPF का फुल फॉर्म क्या है और हमारे पास हमारी स्किन केयर एक्सपर्ट बैठी हैं।
1: हाँ, जिसकी स्किन खुद अच्छी स्किनिंग नहीं कर रही है
0: वो यार देखो थोड़ा मौसमिंग का डिपेंडिंग
1: होता है। हाँ, स्किनिंग पे
0: स्किनिंग में वो तो है
1: ये अलग टाइप की इंग्लिश
0: उसमें हम क्या ही करिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सुदेव भाई एंड कशिश आंसर इज SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और संगीता का मैसेज आया है संगीता ने लिखा है गुड मॉर्निंग कशिश एंड सुदेव SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। संगीता हियर हैव अ ग्रेट डे थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे।
1: गर्ली पॉप्स हैं जिन्होंने आंसर दे दिया है लड़कों का क्या
0: देखिए हमें नहीं पता ना
1: जरूरत है SPF की उनका क्या
0: हमें SPF ये नहीं पता
1: स्मूथ होते हैं और निकल जाते हैं।
0: देखिए मैं बता रहा हूँ अपन लोगों को SPF से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर हम किसी के फैन है वो है SPB के।
1: हाँ देखिए आज हैप्पी बर्थडे भी है उनका।
0: हाँ SPB का बर्थडे भी है आज तो उनका बर्थ एनिवर्सरी है तो उनको याद करते हुए क्योंकि बहुत ही कमाल के सिंगर थे कमाल के सिंगर ही नहीं कमाल के एक इंसान भी थे वो। मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था इंटरव्यू नहीं था रियलिटी शो में वो जज बन के बैठे थे और उसमें एक पार्टिसिपेंट को बता रहे थे रफी साहब के बारे में तो उन्होंने बताया कि रफी साहब किस तरीके से गानों को इमोट करते थे क्या कैसे कैसे कैसे इमोशंस डालते थे तो उन्होंने बोला कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद वो बोले थे कि सी एक अच्छा सिंगर बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है एक अच्छे सिंगर के साथ साथ तुम्हें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। कोई और आपसे अच्छा गा रहा है तो यू शुड हैव द हार्ट टू गो आउट टू देम एंड टेल देम कि यार यू डिड अ ग्रेट जॉब। ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जो ईगो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। Right. और मुझे कई बार लगता है क्योंकि SPB के बारे में जब भी मैंने पढ़ा है सुना है देखा है वीडियोस देखे हैं तो मैंने नोटिस किया कि एज अ सिंगर वो अपने गले को संभाल के रखने के लिए आवाज को संभाल के रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालते थे मगर उनके अंदर की इंसानियत की खूबसूरती इतनी बढ़िया थी कि उनका जो दिया हुआ टैलेंट था उनको जो दिया हुआ टैलेंट था वो अपने आप प्रिजर्व करता रहा। और ये एक सही में वो कहता ना कि रहमत रहती है किसी किसी के ऊपर जो है उसका एक बहुत बड़ा एक मिसाल थे SPB तो उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं उनका एक स्पेशल गाना थोड़ी देर में हम प्ले करेंगे और अभी फिलहाल यहाँ पे सुनिधि चौहान की आवाज में एक गाना हम जरा प्ले करना चाहेंगे।
1: करते हैं लेकिन मैं बता दूं कि बिल्कुल जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया
0: क्या
1: है
0: बात ना?
1: एंड SPF इस चिलचिलाती हुई धूप में इस चुभती हुई धूप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सो जब भी बाहर निकले तो SPF लगा के यानी सनस्क्रीन जो है वो लगाकर ही निकले इससे आप UV रेस से तो जो है प्रोटेक्ट रहते हैं साथ में बहुत सारी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है डिजीजेस होती है उनसे भी आप कहीं ना कहीं सेफ गार्ड हो जाते हो। सो सनस्क्रीन बिल्कुल मत भूलना पानी बिल्कुल मत भूलना और बाकी अगला गाना सुनना बिल्कुल मत भूलना।
0: स्टे ट्यून्ड है रेडियो ऑलिव 106.3 FM
1: जी बिंदास

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million reals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: गम यही है कि गर्मी थोड़ी ज्यादा है और क्या ही कर सकते हैं। सुबह सुबह जब हम आ रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि यार गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, और यार कल दोपहर को बीच में जरा कुछ काम के लिए बाहर निकले मैं और तनिषा, और बाहर से जब अंदर आए तो जो चैन आनंद सुकून हमें मिला, मतलब इतना गर्म हो गया था ना स्किन, इतना गर्म हो गया था ना कि मैं सोच रहा था कि भाई क्या हो रहा है ये करके, मगर अच्छा लगा। थोड़ा बाहर बाहर ऐसे विटामिन डी के लिए गए थे हम, विटामिन डी तो नहीं मिला मगर भपके का
1: विटामिन टैन जरूर मिल गया होगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन टैन मिल गया और गर्मी जो मेरे मुखमंडल में
1: है, दो एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट क्यों लग रहे हो?
0: वो एक साइड में वो सूरज की रोशनी ज्यादा लगी थी ना, इसलिए, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा था एक साइड से वारी थी और मजा आ गया, मगर बहुत मजा आ गया जो मुखमंडल में सूर्य की किरणों ने स्पर्शन किया मेरे।
1: मम्मी के चाटे की याद आ रही
0: है? नहीं नहीं, उतनी उतना दम नहीं है सूरज में हल्के में ले रहे हो देवेश नायर को आप है और यहाँ पे जो है हम आपको मौसम का हाल बताना चाहेंगे, और मौसम के हाल के बारे में बताते वक्त हम पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि देखिए गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, और अभी आज का जो टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। आज का लोएस्ट टेम्परेचर जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 44 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ साथ हवा बह रही है 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और इतनी तेज हवा से मेरे को कोई सवाल नहीं है, बस रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ठंडे हो जाओ तुम प्लीज, ठंडी हवा का झोंका बन के आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा हमें, बहुत अच्छा लगेगा। और फिलहाल आप लोग अभी बाहर है, जरा बताइए भाई बाहर का कैसा है हाल, नजारे कैसे हैं, फोटो खींचिए, भेजिए हमें 3311063 पर, और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में 7:17 हो रहे हैं और हमारे पास जो है मैसेजेस आए हैं। सामी भाई का मैसेज आया, लिखा है कि गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू टुडे, होप यू आर फीलिंग वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब बढ़िया है, आप बताएं क्या हाल है। एक फोटो भेजा उन्होंने, उनके रास्ते का एक फोटो भेजा है, काफी चमकता हुआ सूरज, क्या बताएं। उसके साथ साथ एक और फोटो हमें आया है, मोहम्मद मुशीर आलम भाई ने मैसेज किया है और उन्होंने लिखा है कि सर और मैडम अब तो सीधा गुड आफ्टरनून हो रहा है, मॉर्निंग तो गायब हो गया।
1: Exactly. लोग सीधे आफ्टरनून वॉक के लिए निकलते हैं। आज सुबह सुबह भी जब हम आ रहे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार भाई किस तरीके से ये सुबह 5:30-6 का आसमान लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि सीधे 11 बज रहे हैं।
0: ऐसा गर्मी जब बढ़ती है ऐसा होता है, तो मैं यही बोलूंगा कि अपना ख्याल रखिएगा, पानी अच्छे से पीजिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा, इन्फ्यूज्ड ड्रिंक्स पिएगा और सनस्क्रीन लगाइएगा। बीच में सनस्क्रीन और पानी के बीच में मैंने बोल दिया कि पानी लगाइएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, जिन्हें पता है उन्हें पता है। फिलहाल तो यही बात बोलते हैं हम, जरा आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव, सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi everyone, it's me, Dr. Afzal, Naseem Healthcare. People are always suspicious about when the tooth to get filled and how they can recognize themselves that the tooth needs to be filled. Yeah, if you can make out brown discoloration or black discoloration or a chalky white appearance on the surface of your teeth, just immediately consult your dentist and get the required tooth or teeth to get filled. Filling simply means just removing the caries or damaged portion of the tooth and cleaning the area and restoring the tooth by replacing a material which is biocompatible with the tooth. If you people are capable of undergoing filling treatment in the earlier stage itself, you can just forget that your tooth is getting painful. Usually, all the caries or decay becomes painful in 3 months to 1 year itself. Once you start experiencing pain on your teeth, the treatment is also a bit costlier than doing normal filling. To lead a better dental health, do consult your dentist regularly once in 6 months. Wishing you all have a better health.
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे जो है हम दोनों आ चुके हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। फिट है तो हिट है में।
2: फिट है तो हिट है।
0: फिट है तो हिट है में आज हम बात करेंगे एक मिथ के बारे में। मिथ ये है कि जितना ज्यादा पसीना उतना बेटर वर्कआउट।
1: ऐसा नहीं है।
0: फैक्ट बताते हैं। पसीना या फिर स्वेट जो है बॉडी का कूलिंग सिस्टम है, फैट बर्निंग मीटर नहीं है। रिसर्च दिखाती है कि स्वेट का अमाउंट ज्यादा जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स और हाइड्रेशन के स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। ना कि वर्कआउट कितना इफेक्टिव था। कुछ लोग नेचुरली बहुत पसीना बहाते हैं जबकि कुछ लोग इंटेंस वर्कआउट के बाद भी कंपैरेटिवली कम स्वेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ने दूसरे से बेहतर वर्कआउट किया है। और वर्कआउट की क्वालिटी को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किन किन चीजों से किया जा सकता है बताइए।
1: देखो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट से, परफॉर्मेंस प्रोग्रेशन से, रिकवरी और कंसिस्टेंसी से, और मसल और कार्डियोवास्कुलर एडेप्टेशन से। सो ऐसे ये सब कुछ एलिमेंट्स है जिनसे आप मेजर कर सकते हो। देखो
0: कि आपका वर्कआउट कितना इफेक्टिव था, पसीना कितना बहाया उससे नहीं होता। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि भाई आज तो बहुत पसीने आ गए तो मस्त मजा आ गया।
1: सब मिल्खा सिंह बनते हैं ना कि भाग कर आएंगे, टी-शर्ट जो है वो निचोड़ेंगे मग में और उससे पता चलेगा यार देखो मुझे, मैं कितना भी डांस कर लूं, मैं कितना भी जो है गर्मी में बैठ लूं, मुझे कंपैरेटिवली बहुत कम पसीना आता है। वहीं पे अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बस थोड़ा सा बाहर पानी की बोतल भरने जाते थे क्लास से और जब वापस आते थे तो पूरे भीगे हुए आते थे। हमें लगता था कि वाटर कूलर से पानी से खेल के आ रहा है। फिर हमें जब वो पास आता था हमें पता चलता था ओह दिस इज नॉट पानी,
0: दिस इज नॉट पानी, दिस इज पसीना। यस, तो ये एक चीज है, कभी भी स्वेट जो है एक इफेक्टिव वर्कआउट का मेजर नहीं है। ये बॉडी का कूलिंग सिस्टम रहता है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटी सी जर्नी पर जाते हैं। और वहां से सीधा वापस दो आ जाएंगे। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 Radio Olive, Qatar ka biggest gym brand ab aa raha hai aur bhi powerful andaaz mein. Falcon Fitness Health Club presents its 6th branch grand inauguration at Bin Umran. Is grand opening ko aur bhi special banayenge celebrity guests Shane Nigam, Anna Rajan, Sia Saleem aur Roshan Bashir. Join kijiye is Friday, June 5th, sham 6 baje. Falcon Fitness Bin Umran. One family, one mission, unstoppable. लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on TOT with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009106.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। यह है बिंदास मॉर्निंग्स। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और कशिश मैडम, एक गाना आपने सुना होगा, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। ये गाना ओरिजिनल जो है वो तमिल में है।
1: ओ,
0: और वो पता है किसने गाया?
1: किसने गाया?
0: गेस करो।
1: एस बी बारा सुप्रमण्यम।
0: जी बिल्कुल, तमिल का गाना है। इलय नीला पुड़ीरदे இதயம் வரை நனைகிறதே। तो जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, अपने फेवरेट एसपीबी गाने को जरा बताइए, हमें सेंड कीजिए, मैसेज कीजिए 3331106 पर। देखते हैं कि आपके फेवरेट क्लासिक्स कौन कौन से हैं, हमारे कौन कौन से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मगर थोड़ी ही देर में ऑलिव अपडेट्स सुनेंगे आप, क्या क्या आज चल रहा है कतर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tepkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: क्या हो गया कशिश मैडम?
1: ये है कि वीकेंड आ गया है एंड टुडे इज वन ऑफ दोस डेज जहां पर आपका बोलने का भी मन नहीं करता।
0: हाय हाय हाय हाय,
1: मतलब आपका किसी से कोई बात करने का मन नहीं करता। आपको इरिटेशन हो रहा होता है कि कोई आपसे बात क्यों कर रहा है। एंड ये सबसे ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब आपका बोलने का काम हो। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, मुझे ना पिछले 22 साल में इतनी हिम्मत कभी स्कूल जाने में, कभी जिम जाने में जुटानी नहीं पड़ी जितनी इस वक्त बोलने में जुटानी पड़ रही है। क्योंकि बोलना तो पड़ेगा देखो, और बोलना मुझे पसंद भी है, लेकिन अब मेरे को बोलना भी है लेकिन मेरा बोलने का मन भी नहीं है। लेकिन मैं बिना बोला
0: रांझाना मूवी का लास्ट का मोनोलॉग लग रहा है इसका, धनुष का,
1: कि अगर अब साला कौन उठे, कौन फिर से दिल लगाए। एग्जैक्टली वही कहना चाहती हूँ मैं, कॉपी पेस्ट।
0: अरे अरे अरे अरे अरे, लेकिन फिर से किसी जोया की मोहब्बत में आए
1: फिर से। ये मोहब्बत हर वक्त जो है लेट उठती है, क्या किया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो है एक बात मैं बता रहा था कशिश को, 2 साल पहले दोहा में एक कॉन्सर्ट हुआ था, किसी और का नहीं था, वो था ब्रायन एडम्स का। ठीक है, तो एक रील हम देख रहे थे उसमें ब्रायन एडम्स का एक कॉन्सर्ट का एक विजुअल आया था। तो मैं बता रहा था कि यार 60-65 साल का इंसान है वो आदमी है, वो जिस एनर्जी के साथ उन्होंने स्टेज में परफॉर्म किया ना, कि हमें शर्म आ गई कि भाई हम 27-28 के लोग हैं, हम इतना बूढ़ा फील कर रहे हैं उनके सामने। 2 घंटा कंटिन्यूस परफॉर्म किया उन्होंने, 2 घंटा कंटिन्यूस परफॉर्म किया। बीच में अपने बैंड वालों को बोला तुम जाओ रेस्ट वेस्ट करके आओ, मैं देख लूंगा करके। फिर एक अकोस्टिक गिटार लेके खड़े हो गए, खुद गाने लग गए। क्या मस्त एक विजुअल था, क्या मस्त एक एक्सपीरियंस था। और जिन लोगों ने भी उस चीज को एक्सपीरियंस किया है वो समझ सकते हैं इस बात को। और जो एनर्जी थी और उस एज में वो एनर्जी थी।
1: yes.
0: और शो के शुरुआत में मैंने एक चीज बोली थी कि भाई देखिए, हमें अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए सिर्फ सोना काफी नहीं होता। रेस्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हमें फुलफिल करते हैं। कुछ चीजें हमें बहुत फुलफिल करती है, हमें कंटेंटमेंट जिन चीजों से मिलती है वो क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: कूल सॉन्ग रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तालाबाद प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
1: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
1: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
0: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441133

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे आपको कि कैसे हम अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, रीएनर्जाइज कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हैप्पीनेस लॉन्च के वीडियोस जो आप देख सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेसेस में जाके वहां के लोगों को रिचार्ज और रीएनर्जाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। और उसके अलावा अब कैसे हम अपने लाइफ में सेल्फ केयर में ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं वो सब मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्विक रिचार्ज की बात करते हैं, ठीक है। क्विक रिचार्ज जो 5 to 30 minutes के अंदर आप कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक ब्रिस्क वॉक लेना शाम को, जरा बाहर निकलना है, फिर सुबह सुबह, और पानी पीना, अच्छा प्रोटीन रिच स्नैक खाना, अपने नेक को, शोल्डर्स को, हिप को, इन सबको स्ट्रेच करना, ठीक है। अपने मूड को बूस्ट करने वाला गाना सुनना, 10 to 20 minutes का पावर नैप लेना, फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग करना, ये है क्विक रिचार्ज के लिए। अब डेली एनर्जी बूस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 7 to 8 hours की नींद, ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली रेस्टेड हो तो मूड स्विंग्स उतने नहीं आएंगे। फिर बैलेंस्ड मील विद एडिक्वेट प्रोटीन एंड फाइबर, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन फाइबर ये सब लेते हैं तो गट हैप्पी रहता है, गट हैप्पी रहता है तो ब्रेन भी हैप्पी रहता है, और ब्रेन भी हैप्पी रहता है तो हम हैप्पी
1: रहते हैं, और हम हैप्पी रहते हैं तो हमारे साथ ना
0: सर बिल्कुल फिर हैप्पी हैप्पी दुनिया हैप्पी हो जाएगी। फिर एक्सेसिव कैफीन अगर आप लेते हैं तो उसे लिमिट कर दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली, 20 to 30 minutes a day आप रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, आपको सही में अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज करने के बाद जो एक फीलिंग आती है, आह बहुत बढ़िया वाला एक फीलिंग है वो, आप उसे डेली बेसिस में अगर एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और लॉन्ग वर्क सेशंस के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना मत भूलिएगा। अब मेंटल रिचार्ज के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन से डिस्कनेक्ट कीजिए। और आयरनी ये है कि ये चीज मैं स्क्रीन में देख के बता रहा हूँ आपको,
1: बड़ी स्क्रीन से ब्रेक लेने के लिए छोटी स्क्रीन देख लेते हैं, छोटी स्क्रीन से ब्रेक लेने के लिए बड़ी स्क्रीन देख लेते हैं,
0: तो ये स्क्रीन से थोड़ा छुटकारा पाइए, स्क्रीन को हटाइए, किसी को अपने सामने बिठाइए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक हॉबी जो आप जेन्युइनली एंजॉय करते हैं उसमें आप इंडल्ज कर सकते हैं, या फिर एक नई हॉबी सीखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। रीड कीजिए, लिखिए, अपने गोल्स के बारे में रिफ्लेक्ट कीजिए, बैठिए अपने साथ, बस बैठ जाइए ऐसे, अपने इंटरनल जो डायलॉग चल रहा है आपका उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए, ऑब्जर्व कीजिए, धीरे धीरे धीरे वो सब सेटल हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और वीकेंड और डीपर रेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं वो सबसे मेन चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल यहाँ पे है जुनून, गाना सुनते हैं के आवाज में, न्यूयॉर्क मूवी से।

0: 2026 on Todd with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win
3: the big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
8: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसुस.
0: और यहां पे जो है हम रीएनर्जाइज होने की बात कर रहे थे.
1: yes.
0: तो वीकेंड में कैसे डीपर रेस्ट हम एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे. तो बताइए कशिश मैडम, क्या कहना है आपको?
1: सबसे पहले तो है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो नेचर के साथ आपको बिताना चाहिए.
0: okay.
1: उसके बाद लो इनपुट डे जो है मिनिमल सोशल मीडिया और न्यूज के साथ आपको बिताना चाहिए.
0: okay.
1: उसके बाद आप जो है सो सकते हैं, लेकिन ओवर स्लीप भी नहीं करना है, क्योंकि ये कल ही मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि जब ज्यादा सोते हैं तो फिर ऐसे थकान सी होने लग जाती है. एंड फिर ऐसी चीजों को जो है ढूंढिए जो आपकी एनर्जी को सबसे ज्यादा ड्रेन कर रहे हैं या जिससे सबसे ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, फिर उसके हिसाब से कीजिए.
0: ओके, तो ये सारी चीजें हम वीकेंड में कर सकते हैं जिससे जो है हमें डीपर रेस्ट मिल सकता.
1: yes.
0: है, अच्छे से हम रीसेट कर सकते हैं. तो फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं. अभी अतरंगी रे मूवी का गाना सुनते हैं अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की आवाज में, रेत जरा सी. स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: जी बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: जदो लग्या तेनु विश्क दरो

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे जो है एक बहुत ही बढ़िया बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक छोटा सा ट्रिविया है। अच्छा। एक सवाल के माध्यम से ही हम पूछना चाहेंगे। उसके पहले एक मैसेज मेरे पास आया था। राजीव मोदी जी ने मैसेज किया था थोड़ी देर पहले। हमने मूड को अपलिफ्ट करने की बात की थी। उन्होंने बोला था कि गाने सुनने चाहिए। मैंने बताया था गाने सुनने चाहिए पसंद के। तो बोले थे कि आप लोग कहाँ पसंद के गाने प्ले करते हो आप। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, हम पूछते हैं। तो बोले कहाँ पूछते हो सर। पहली बात तो ये है कि हम पूछते जरूर हैं। जरूरी नहीं है शायद आप जब सुन रहे हो तब पूछे, बट अभी आपने सुना है तो हम पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट गाना।
1: और हैरानी की बात ये है कि उन्होंने पूरी ऑडियो में हमसे पूरी शिकायत करी, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें कौन सा गाना सुनना है।
0: तो बता दीजिए आप कौन सा गाना सुनना है आपको। और पहले एक और चीज मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। देखिए ऐसे बहुत सारे पसंद के गाने मेरे हैं जो मैं प्ले करना चाहता हूँ मगर मैं नहीं प्ले कर पाता। उसके रीजंस कुछ हैं। देर आर सर्टन रीजंस फॉर दैट। और कभी कभी कुछ गाने जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो शायद हमारे प्लेलिस्ट में होते नहीं है या फिर हमारे लिस्ट में एडेड नहीं होता। अगर लिस्ट में एडेड है तो भी वो हम प्ले नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। हम जानबूझ के अरे नहीं सुनाना इनका पसंदीदा गाना ऐसे सोच के नहीं बैठते हैं।
1: हमारे जो प्लेलिस्ट है वो काफी सारे लोगों को काफी रिसर्च को काफी सर्वेस को ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि हर किसी को वो अच्छी लगे। अब अगर मैं अपने फेवरेट गाने सुना दूंगी फिर आप लोग अनुव जैन को सुन के ज्यादा बोर नहीं हो जाओगे। इसीलिए काफी नाप तोल के जो है हमारी प्लेलिस्ट बनाई जाती है ताकि आप अलग अलग टाइप के हर जॉनर के हर वाइब के गाने जो है वो एंजॉय कर सके। एंड रेडियो का देखो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट तो यही लगता है कि जब कोई बहुत ऐसा गाना जो बहुत टाइम से नहीं सुना और वो अचानक से
0: सुनने को मिल
1: रेडियो पे आ जाता है, वरना आपकी प्लेलिस्ट के हिसाब से चलेंगे तो फिर लाइफ में वो फन वो स्पार्क मिसिंग रहेगा ना यार हमेशा।
0: प्रेडिक्टेबिलिटी अगर आ गई तो फिर मजा क्या आएगा।
1: एग्जैक्टली। एंड सोचो आप किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं एंड अचानक से उस सिचुएशन से रिलेटेड गाना जो है पॉप कर जाता है।
0: हाँ।
1: या सोचो मैं बहुत लो फील कर रही हूँ और गाना आ जाए आशाएं।
0: क्या बात कर रही
1: मुझे मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा ना। सो बस यही है रेडियो का सबसे बेस्ट पॉइंट कि आप कभी भी कोई भी गाना जो है एक्सपेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि यार अब अगला गाना यही होगा। खैर आप लोग चाहें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फेवरेट गाने जो है वो चलाएं। बाकी
0: बताइए बताइए आपका फेवरेट गाना बताइए। प्ले करेंगे तो आप तो बिना प्ले करके जाना नहीं हो सकता ऐसे। तो यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक फेवरेट गाना प्ले करते हैं किसी का, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में कॉकटेल मूवी का। स्टे ट्यून्ड है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM।
1: जीओ बिंदास।
0: सवाल के बारे में भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर में आके पूछता हूँ मैं। ठीक है अभी आ रहा हूँ।

0: ये सवाल लोगों से पूछने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या हम लायक हैं कि कोई हम पे मरने वाला हो?
1: आपको देख के जरूर मरेगा।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तारीफ नहीं थी।
0: आपकी आवाज का सार्कैज़म ना समझने के लिए बहरा नहीं हूं मैं, ठीक है। वेलकम बैक, ये है बिंदास मॉर्निंग्स। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे भाई एक सवाल पूछने के लिए हम आए थे, एक ट्रिविया बताएंगे सवाल के माध्यम से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का फीवर जो है छा रहा है धीरे धीरे धीरे, 7 दिन और बचे हुए हैं। और आज का सवाल ये है कि कौन से गोलकीपर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स रखे हैं। क्लीन शीट यानी कि उन्होंने गोल्स कंसीड नहीं किए हैं।
1: यही पूछने वाली थी मैं, क्लीन शीट क्या होता है?
0: हाँ, मैं समझ जाता हूँ भाई, हम पढ़ लेते हैं, अंतर्यामी हैं हम। तो बताइए सवाल का जवाब क्या है। विच गोलकीपर्स हैव द मोस्ट क्लीन शीट्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ये आपको बताना है। दो गोलकीपर्स हैं, मैं क्लू और दे चुका हूँ। इससे ज्यादा क्लू मांगोगे तो फिर जवाब ही देना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी जवाब भेजिए मुझे 3311063 पर। तब तक के लिए यहाँ पे काम करते हैं, जबरदस्त हिट सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: का अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आइकॉनिक मूवी, आइकॉनिक गाना, कभी खुशी कभी गम, 3KG या K3G,
1: आंखों से आंसू आ जाते हैं ये गाना सुनते ही।
0: क्यों?

0: मैं
1: इसका जवाब देना चाहती हूँ, मुझे सही जवाब पता है, कोहली और
0: रोहित शर्मा।
1: नहीं,
0: फिर
1: वो तो कर सकते।
0: अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और एक और मैसेज आया हमारे पास, बंगाज भाई का मैसेज आया है। नहीं नहीं, उनका नाम एक्चुअली मैं अभी पढ़ा ढंग से, मुदस्सिर रजा लिखा है, बट उनके आईडी में ऐसे लिखा हुआ था इसलिए मैंने गलत पढ़ा था, सॉरी भाई। मुदस्सिर भाई ने मैसेज किया है, लिखा है पीटर शेल्टन फ्रॉम इंग्लैंड एंड फेबियन मार्थेस फ्रॉम फ्रांस। बिल्कुल सही जवाब है ये, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने जो है इस सवाल का जवाब दिया है। दोनों ने, दोनों का जो स्कोर है क्लीन शीट्स का वो है 10, और इसलिए इन दोनों को जो है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे क्लीन शीट्स रखने वाले।
1: क्लीन शीट का मतलब होता है जो
0: गोल कंसीड ना किया हो उन्होंने,
1: जिन्होंने एक भी
0: गोल कंसीड नहीं किया मैच,
1: कंसीड इज लाइक कि गोल होने नहीं दिया,
0: होने नहीं दिया।
1: ओ, और वो इंग्लैंड से है।
0: हाँ, एक प्लेयर इंग्लैंड से है और एक प्लेयर फ्रांस से है, बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इंग्लैंड के पास एक ही वर्ल्ड कप है।
1: कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ?
0: देखिये, इंग्लैंड के पास क्यों ही एक वर्ल्ड कप है इसका किसी को नहीं पता, किसी के पास खबर नहीं है, बट खबर नहीं है, गाना हमारे पास है यहाँ पे जो हम प्ले कर रहे हैं, दोस्ताना मूवी का है, विशाल ददलानी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM।
1: जी विंदास।

0: छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेला जादू
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: भाई बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि ये मुझे मानना ही पड़ेगा, किसी गाने के टाइटल में मुझे कंसेंट नजर आया। चल प्यार करेगी, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है
1: और वो बोल भी रही है ना जी ना जी।
0: चलो ये अच्छा लगा।
1: और उसके बाद वो माना नहीं ना, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे।
0: देखो वहीं पे तो गलती होती है यार, ये ऐसे नहीं करना होता ना, पूछो आगे वाले से, जैसे हुमा कुरैशी बोलती है पूछना चाहिए ना, परमिशन लेना चाहिए ना। यही, बट हम भी जरा परमिशन लेते हैं निकलने का, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, 9:50 हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा वक्त जो है धीरे धीरे खत्म होने वाला है। थोड़ी देर में मुस्कान यहाँ पे आएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, तो मुस्कान का खुली बाहों से स्वागत कीजिएगा। जितना प्यार हमें दिया है उतना प्यार मुस्कान को दीजिएगा, और एक ही बात हम याद दिलाएंगे जाते जाते, वो है कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना,
1: बिल्कुल,
0: और हमें जरा दुआओं में
1: याद रखना।
0: फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 FM,
1: जियो बिंदास।

0: Kids आएंगे?
1: आएंगे नहीं, आ गए।
2: Olive Short Break.
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: This hour is brought to you by
5: Homes Are Us. We complete your home.

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है. भाई जून शुरू हुए पूरे चार दिन हो चुके हैं, इट्स 4th of June टुडे, और एसी अब हमारे घर का मेंबर बन चुका है. मतलब मुझे जब मैं यहाँ ऑफिस से घर जाती हूँ तो पूरे 20-25 मिनट लगते हैं अपने रूम को ठंडा करने में, और उसके बाद दूसरी हर चीज़ ना, हर इंसान बोल रहा है कि यार कितनी गर्मी है. लेकिन ऑनेस्टली जून का अपना चार्म भी होता है. समर प्लान्स, ट्रैवल प्लान्स, वीकेंड ब्रंचेस, लेट नाइट ड्राइव्स, और कभी कभी बस घर पर एसी के सामने बैठ के चाय पीने का भी प्लान होता है. सो आज के शो में हम बात करने वाले हैं साइकिलिंग की, बुक्स की, पैशन की, फैशन की, और कुछ ऐसे ट्रेंड्स की जो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं. सो सीट बेल्ट बांध लीजिए, और अगला गाना जो है वो बहुत ही मस्त होने वाला है. इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: trek. Brought to you by Danata Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ। ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
4: हाय, आई एम राजकुमार राव।
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: सिर्फ स्नीकर्स खरीदने के लिए 33,000 लोग. यस, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मास्ट है. भाई, दोहा में पहली बार स्नीकर कौन हुआ था और अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो उसने हिस्ट्री बना दी. 33,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 3 दिन में परचेस कर चुके हैं और ये इवेंट ना दुनिया भर में फेमस है और दोहा एडिशन ने अटेंडेंस रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मतलब बहुत अलग अलग जगहों पर ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. जब लोग स्नीकर कल्चर नहीं समझते उनके लिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ स्नीकर्स ना लोग शूज की तरह नहीं बल्कि ऐसे कहते ना कलेक्शन को बनाने के लिए ट्रीट करते हैं, लेते हैं. सो लिमिटेड एडिशन शूज ना कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में रीसेल होते हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग कार्ड या फिर मैं बोलूं कि रेयर वॉचेस की तरह. इवेंट में 1.2 बिलियन से ज्यादा सेल हुई है और जब कतर में इवेंट हो रहा था आई वाज लाइक कि स्नीकर कौन ही तो है, मतलब जूते ही तो है. बट यार इतना ज्यादा क्रेज देखा है उसका ना सबने. सो आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप कलेक्ट करते हो, चाहे वो शूज हो, वॉचेस हो, परफ्यूम हो या कुछ और जो आपको लगता है कि यार ये मतलब मुझे इसका कलेक्शन करना बहुत पसंद है. सो मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं सोशल मीडिया पर जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, जो पुरानी पुरानी कुछ चीजें कलेक्ट करते हैं, विंटेज चीजें उनके पास होती हैं. आप मुझे बताओ आपको कौन सी चीजों को कलेक्ट करना पसंद है. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

सो फ्यूचर की सिटी सिर्फ कार्स के लिए नहीं होगी. कतर ने अपना अपडेटेड बाइसिकल मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है भाई. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान. शो का नाम है लाइफ मस्त है और नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं. 3800 किलोमीटर से ज्यादा फ्यूचर बाइक रूट्स होंगे. 110 किलोमीटर ग्रेड सेपरेटेड क्रॉसिंग्स होंगी. 7 मेगा हब्स फॉर साइकिलिस्ट एंड ई स्कूटर यूजर्स के लिए और 19% पॉपुलेशन के पास बाइसिकल या फिर माइक्रो जो मोबिलिटी डिवाइस है वो होगा. लेकिन डेली ट्रिप्स में उसका यूसेज 1% से भी कम है. मतलब साइकिल है लेकिन उसे कम यूज किया जा रहा है. इवन रिसर्च के अकॉर्डिंग सिटीज दैट प्रमोट साइकिलिंग ऑफन सी बेटर पब्लिक हेल्थ एंड लोअर ट्रैफिक प्रेशर. सो सवाल ये है कि अगर सेफ साइकिलिंग रूट्स हर जगह अवेलेबल हों तो क्या आप साइकिल यूज करोगे यहाँ पर? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान. नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Life

So, भाई आज की जो किताब है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है और इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है. मतलब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जस्ट कि इस किताब के बारे में जब भी बात होती है तो लोग सोचते हैं कि यार ये सबसे ज़्यादा मतलब यू नो कॉन्वर्सेशन में रही किताबों में से एक है. किताब का नाम है येलो फेस. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. ये रीसेंट ईयर्स की मोस्ट टॉक्ड अबाउट बेस्ट सेलिंग नॉवल्स में से एक है. स्टोरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अराउंड घूमती है और सोशल मीडिया फेम, सक्सेस और एथिक्स जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है. अब बुक रीडर्स को कंटिन्यूसली अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस जो है ये किताब पूछती रहती है. सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है और सक्सेस के लिए लोग कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. अगर आप थ्रिलर और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो सो ये एक्सेलेंट पिक है आपके लिए. सो आपका सवाल जो है आज का वो ये है कि आपके हिसाब से टैलेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अपॉर्चुनिटी, बताइए मुझे ज़रा 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

भाई देखो, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और उड़ाना बहुत ज़्यादा आसान। एक रीसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप अननेसेसरी एक्सपेंसिव में यू नो टॉप 5 चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे मतलब इतना रिलेटेबल लगा, मुझे लगा कि हाँ यार बात तो सही है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई नंबर 5th पे, मतलब जो टॉप 5 की लिस्ट है उसमें 5वें नंबर पर है लग्जरी कार्स। लोग सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं 5वें नंबर पर लग्जरी कार्स पर, वो भी नई गाड़ियों पर। फिर आता है फास्ट फैशन इम्पल्सिव बाय, मतलब जहाँ पर आपको दिखा कि यार ये इंस्टाग्राम पर बड़ा ट्रेंडिंग है तो ले लेते हैं, मतलब इस तो मैं इस 4th नंबर वाली कैटेगरी पे आती हूँ। फिर आती है भाई एक्सपेंसिव कॉफी डेट्स, जो मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि शाम को जब दोस्तों से मिलना है या फिर यू नो कहीं किसी किटी पार्टी में जाना है तो बस एक अच्छी एक्सपेंसिव जगह पर कॉफी पे चले जाते हैं। एंड आई फील कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, जस्ट वन कॉफी एंड सम स्नैक्स। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है एक्सटेंडेड वारंटीज। आपने हर बार सोचा होगा कि यार ले लेता हूं, क्या पता फोन गिर जाए, क्या पता फोन को कुछ हो जाए या लैपटॉप के साथ कुछ हो जाए, तो लोग इस एक्सटेंडेड वारंटीज में बहुत पैसे खर्च करते हैं। और 1st नंबर पर है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट। इससे मैं पूरी तरह से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि भाई मैंने कई बार ऐसा किया है कि मैं भूल गई इंटरेस्ट पे करना, मतलब उसका जो क्रेडिट का अमाउंट है वो पे करना, और मैंने उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट पे किया है, सो आई कैन रिलेट। आप मुझे बताइए इन 5 चीज़ों में से आप कौन सी सबसे ज़्यादा यू नो जिसमें पैसे डालते हो। सो अगर मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात करूँ तो वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव साइलेंट एक्सपेंस है। सो क्योंकि लोग प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं, इंटरेस्ट नहीं देखते, और फास्ट फैशन में इंटरेस्टिंग कैटेगरी है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी हम कपड़े ना सिर्फ एक बार पहनने के लिए लेते हैं, हमें लगता है कि यार ये वाली पार्टी में हमें ऐसा दिखना है और उसके बाद बस। सो फिर वार्डरोब जो है वो म्यूजियम की तरह दिखने लगता है, जो मेरे साथ पहले होता था, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। सो सवाल ये है कि आप सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव शॉपिंग किस चीज़ की करते हो। 3311106 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लेट्स टॉक अबाउट समर कलर्स भाई, समर्स में क्या खाना चाहिए, कैसे आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हो, पूरा दिन आपको ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। पर भाई कौन से कलर्स हैं जो इस टाइम पर इन है? यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई आपको ऑफिस में हर दिन कोई ना कोई ऐसा दिखेगा जो एकदम अप टू डेट रहता है। मेरे ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने अमेजिंग कलर्स पहनते हैं, इतना अच्छा उनका ड्रेसिंग सेंस होता है, मुझे समटाइम्स लगता है कि यार काश मैं भी ये सब कैरी कर पाती। सो इस समर का कलर अगर मैं बात करूं तो बेज बिल्कुल भी नहीं है, इस समर का कलर है थोड़ा सा डिफरेंट। फैशन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 समर के हॉटेस्ट शेड्स हैं लाइम ग्रीन, सिट्रस ऑरेंज और फ्लेमिंगो पिंक। और इवन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि ब्राइट कलर्स एनर्जी और पॉजिटिविटी का जो एसोसिएट है वो करते हैं, और इसीलिए समर कलेक्शन यूजुअली कलरफुल ही होते हैं। सो जून की गर्मी में अगर मूड ब्राइट रखना है तो वार्डरोब भी थोड़ा सा ब्राइट रखना पड़ेगा बॉस। सो क्वेश्चन यह है कि आपका फेवरेट समर कलर कौन सा है? देखो कुछ लोगों का होता है कि यार इस समर इतनी गर्मियां हैं, हम व्हाइट कलर या फिर लाइट कलर्स ही जाएंगे। सो आई पर्सनली प्रेफर कलरफुल वार्डरोब गर्मियों के लिए स्पेशली। आप मुझे बताइए आपका फेवरेट कलर समर्स के लिए। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

भाई फोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा है, फिर भी लोग पुराने कैमरा क्यों खरीद रहे हैं? ये जेंजी का लेटेस्ट ऑब्सेशन है भाई। मतलब आप जहां पर भी देखोगे डिजिटल कैमरास, ओल्ड पॉइंट एंड शूट कैमरास, Y2K एस्थेटिक्स, और मतलब ये सब आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। मैं तो बेसिकली सोशल मीडिया पर ही देखती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताती हूँ, लोग परफेक्ट फोटोज से थोड़े से ना बोर हो गए हैं, अब उन्हें चाहिए इम्परफेक्ट, ग्रेनी और नेचुरल पिक्चर ट्रेंड, जो कि एक्चुअली बहुत ट्रेंडी है इस टाइम पे। मतलब आपने देख लिया कि कितना ज्यादा एस्थेटिक है इंस्टाग्राम पर, अब अगर आप जेंजीज का प्रोफाइल देखोगे तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया करंटली वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेट ट्रेंड है, और मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका ओल्ड स्कूल फोटोज जो हैं वो आपको पसंद है, या फिर ये अल्ट्रा HD स्मार्टफोन्स पिक्चर आपको ज्यादा पसंद है? 3311063 इज माय व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से बताओ मुझे। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे आजकल का अल्ट्रा HD स्मार्टफोन पिक्चर्स ना, ये सब बहुत पसंद है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमें नहीं, हमारे आसपास की सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरत दिखाते हैं। सो आप मुझे बताओ आपकी पसंद क्या है। 3311063 इज माय नंबर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: यहाँ पर मुझसे अगर कोई कह दे सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है तो मुझसे वो भी नहीं होता, लेकिन कतर में और बहुत सारी कंट्रीज में मैंने ये कल्चर देखा कि सुबह 6 बजे उठकर लोग कॉफी पीने जा रहे हैं, वो भी वॉलंटरली। मतलब दुनिया भर में मॉर्निंग क्लब्स का ट्रेंड जो है वो अब ग्रो कर रहा है, रनिंग क्लब्स, वॉकिंग क्लब्स, कॉफी मीटअप्स, ये सब चल रहा है। भाई इसका रीजन क्या है? लोग चाहते हैं कि और ज्यादा रियल लाइफ फ्रेंडशिप जो है वो बने, सोशल मीडिया से सब थक चुके हैं। You are listening Radio All Over 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। लेस स्क्रीन टाइम, मोर ह्यूमन कनेक्शन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च भी बार बार ये शो करती है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस जो हैं ये आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत इम्प्रूव करते हैं। लोगों से मिलना, बातें करना, कॉफी पर बैठना या फिर बस चाय पर बैठ जाना, बस आपको ये बहुत ज्यादा सुकून देता है। मतलब दोस्ती भी और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट भी। अब सवाल ये है कि आप सुबह वाले इंसान हो या फिर आपको शाम में ज्यादा पसंद है। बाय द वे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इवनिंग ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिन भर के सारे काम अब निपट चुके हैं एंड आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस। अगर मैं सुबह 6 बजे उठ के किसी से मिलने या कॉफी पीने के लिए जाती हूं ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू और मैं वो सब पीछे छोड़ के शायद कुछ ऐसा काम कर रही हूं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Radio

0: आज सुबह सुबह आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड एंड मुझे ऐसा लगा कि लोग मोटिवेशन का ना वेट कर रहे होते हैं, तो मैं भी उसी कैटेगरी में आती थी एक टाइम पे, पर अभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ. सो आप को भी मोटिवेशन का वेट नहीं करना, बस एक्शन लेना है. 5 सेकंड रूल का कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल है. कुछ करना है 5 से रिवर्स काउंट करो, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट कर दो. रिसर्च कहती है कि ओवर थिंकिंग और हेजिटेशन के बीच कुछ ही सेकेंड्स का गैप होता है, बस वो सेकेंड्स आपको मिटाने हैं और आप उस मोमेंट में एक्शन ले लेते हो, तो जो प्रोकेस्टिनेशन होता है वो कम हो सकता है. एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई कितनी छोटी छोटी चीजें हैं और हम क्या करते हैं, हम वेट ही करते रह जाते हैं. बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. हर दिन मैं आपको ना कोई नई थ्योरी बताती हूँ, चाहे वो किडलिंस की थ्योरी है, विल्सन की थ्योरी है. आज ये 5 सेकंड रूल्स को भी अपना के देखो. मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्चुअली बहुत सारी चीजें करने का मन होता है पर आलस बहुत ज्यादा होता है. हम वेट कर रहे होते हैं कि यार कोई तो मोटिवेशन मिले जिसकी वजह से हमें ये सब स्टार्ट करने का टाइम मिल जाए. लेकिन सवाल ये है कि आप किस काम को काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो, क्या वो जिम है या फिर वो आपका फूड का कोई डाइट प्लान है या फिर कोई काम जो आपको लगता है कि यार बहुत टाइम से पेंडिंग है, करना तो है पर कब, इसका कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा. बट आई विल से कि आप फटाफट से बताइए मुझे कि आप किस काम को काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

आई नो आज वीकेंड है तो किसी का किसी होटल जाने का प्लान होगा, किसी रिजॉर्ट जाने का प्लान होगा, और इसी बीच क्योंकि अब गर्मी बहुत ज्यादा है तो लोग इंडोर प्लान्स जो है वो ज्यादा बना रहे हैं. सो होटल में या कहीं पे भी किसी रिजॉर्ट में जब आप जाते हो तो बहुत ही लग्जरियस फील आता है. आंसर है उसकी सेंट मार्केटिंग. लग्जरी होटल्स ऑफन सिग्नेचर फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं और स्मॉल जो जगह पर हम जाते हैं, जो छोटे छोटे कैफेज होते हैं, उनकी अपनी एक अलग फ्रेग्रेंस है. सो जो स्मेल डायरेक्टली मेमोरी और इमोशंस को ना लिंक्ड करती है. आपको पता है यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि स्मेल सबसे पावरफुल मेमोरी ट्रिगर में से एक है. इसीलिए कुछ फ्रेग्रेंसेस इंस्टेंटली वेकेशन या फिर कम्फर्ट आपको देती हैं. So, इसका एक इंटरेस्टिंग हैक है कि घर में भी सटल फ्रेग्रेंसेस, फ्रेश फ्लावर्स या फिर एसेंशियल ऑयल्स यूज करके सेम इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो. सो इस वीकेंड पे जब आप ग्रॉसरी खरीदने जाओ तो घर के लिए कुछ अच्छी फ्रेग्रेंसेस भी खरीद कर लेकर आना. यू विल फील बेटर. भाई मैंने भी ये ट्राई किया है और आई ट्राई कुछ सेंटेड कैंडल्स या फिर कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो मुझे लगता है कि एक्चुअली बहुत अच्छा फील देती हैं और आपको ना वीकेंड पे या किसी भी दिन शाम को ना रिलैक्स करने के लिए बहुत बढ़िया लगता है. सो सवाल यह है कि कौन सी स्मेल आपको इंस्टेंटली हैप्पी कर देती है. जैसे मेरे लिए जो रोज वाली स्मेल होती है ना, रेड रोजेज वाली, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. बट एवरीबडी हैज समथिंग यू नो, कि किसी को लेवेंडर पसंद है, किसी को मोरिंगा बहुत पसंद है, किसी को शिया बटर वाली स्मेल बहुत पसंद है. तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा ऐसा परफ्यूम है या कौन से ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जो घर में सबसे ज्यादा पसंद है. 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज़ में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

जिंदगी का मजा ना अक्सर छोटी छोटी चीजों में ही छुपा होता है। कभी एक अच्छी सी चाय, कभी एक फेवरेट गाना, कभी किसी पुरानी दोस्त का मैसेज और कभी एक अच्छी सी किताब। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें भी अपनी फेवरेट चीजों में ऐड कर लेनी चाहिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो बेसिकली दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा और आज तो थर्सडे भी है। सो आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्लान्स जो बन गए होंगे या फिर बन रहे होंगे, ग्रुप्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं वीकेंड्स पे, स्पेशली जब कोई प्लान बन रहा होता है तो कई सारे लोग अपने अपने सजेशन देते हैं कि यार आज शाम को यहाँ जाते हैं, कोई मूवी देखने प्लान कर रहा होता है तो कोई घर पे ही डिनर प्लान कर रहा होता है। बाय द वे आप मुझे बताइए कि आपके आज के क्या प्लान है और फ्राइडे के और सैटरडे के आपके क्या प्लान है। 3311106 इज माई नंबर। बाय द वे मैं कल फ्राइडे को आपको मिलने वाली हूँ शाम को टेक टॉक लेकर, जहां पर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, बात करेंगे कि क्या नया चल रहा है देश दुनिया में और साथ ही के साथ बात करेंगे कि फ्राइडे मेरा कैसा रहा। बाय द वे लाइफ हमेशा ना बड़े मोमेंट से नहीं बनती, स्मॉल मोमेंट से ही बनती है। तो आज अगर कोई छोटी सी अच्छी बात हुई है तो उसे इग्नोर मत करो, सेलिब्रेट करो, स्माइल करो और याद रखो लाइफ मस्त है। स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर, एंड जियो, बिंदास।

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन ओमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन ओमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Music Marathon. 1 ghanta. Non-stop back-to-back gunning.

0: 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

Sachin Jigar ki awaaz mein beautiful rendition of Cyborg only on Radio 11.3 FM. Dinesh aa gaya ke saath only recharge lekar. A very good afternoon meri jaan. Thursday ka din hai aaj to khushiyan hi khushiyan kyunki weekend aa chuka hai. Main to bahut khush hu aur aapko pata hai mera weekend ka kya plan hota hai. Abhi bhi wahi plan hai aur isiliye main khush hu. Aap bataye aapke kya plans hai. Pehle आज का दिन अभी तक का कैसा जा रहा है ये जानना चाहूंगी. व्हाट्स द वाइब ऑफ दिस थर्सडे जून 4th. 3311106 रीजन नंबर मैसेज कीजिए फटाफट से बताइए मुझे.

0: हाँ जी, along with that, reels पे जो ये crazy तरीके से viral था और हमारे मुंह पे अभी तक चढ़ा हुआ है।
1: रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल रो रोए बिछोरी बोले से हो।
0: All these amazing tracks are aligned for you in this hour, और साथ में बहुत सारी surprises और भी हैं और ढेर सारी बातें भी हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल। तो आइए बताइए 3311 1063 पर, या फिर कॉल भी कर सकते हैं 4444 1063 पर, और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM। जियो बिंदास मेरी जान।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Alicia.
1: अरिजीत सिंह की आवाज में डार्लिंग्स मूवी से लाइलाज. क्या सुंदर गाया ना अरिजीत सिंह ने. मतलब मैं अभी सुन रही थी बैठ के स्टूडियो में से फुल वॉल्यूम करके, आई वाज लिटरली लॉस्ट एंड आई वाज लाइक खत्म नहीं होना चाहिए गाना, इट शुड गो ऑन बिकॉज इट साउंड सो डिवाइन एंड ब्यूटिफुल. यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 11.06.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑल ओवर टॉक चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ. पहले मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? आई थिंक हम सब ने देखा है. इनिशियली तो मुझे भी बड़ा मजा आता था उसे देख के, फिर उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया. बट आई नो अ फ्यू पीपल राइट नाउ, जैसे मेरा गो टू शो इज फ्रेंड्स ना, वैसे ही कुछ लोगों का गो टू शो लाइक व्हेन देयर ईटिंग दे वांट टू वॉच समथिंग, दे वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा. एंड आई एम अपॉल्ड बाय दैट, बट ठीक है, टू ईच ऑफ देयर ओन, अपनी चॉइसेस हैं. और उसी से एक बात बोलना चाहूंगी जो हमारे भले के लिए. So we all have seen that show. और उसमें हमने देखा है how Jethalal treats Babita ji. Yes, that is exact the same way we should be treating our mental health, मेरी जान. Yes, the way Jethalal used to treat Babita ji, वैसे ही अपनी mental health को treat कीजिए with care and with love. समझ रहे हो बात को? बहुत important है ये चीज. और उसको किसी भी point पे ignore मत करो. जो भी यू नो आपके हेड में से केओस क्रिएट कर रहा है ना, उस चीज को फटाफट से निकाल के साइड कर दो. उसके बारे में सोचना बंद करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. पर हम सोच सोच के खुद के दिमाग की दही कर लेते हैं. सो डोंट डू दैट. और वैसे भी इस टाइम जो गर्मी हो रही है ना, इसमें तो मुझे बस यूं ही चिढ़ मच रही है कि क्यों हो रहा है ये. मतलब आई डू नॉट इवन नीड अ रीजन टू स्नैप एट पीपल. और वो कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो पा रहा है ना, बट करना पड़ता है क्योंकि इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? और अब गर्मी की बात कर ली है तो कूल सॉन्ग तो बनता है. आइए एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर. आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: Denisha.
1: आधे फैसले मारो अलीशा चुनाव की आवाज में आज प्रेमी का सब कहानी से बहुत ही सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीशा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर और भाई क्रेजी मौसम हो रखा है पता है आपको यू नो। और मेट डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है कि फ्राइडे और सैटरडे को ऐसे स्ट्रांग विंड्स होने वाली है सो प्लीज ख्याल रखिएगा, डस्ट भी होगी। सो अगर एलर्जी वगैरह है तो बाहर निकलते हुए साथ में जो भी जरूरी चीजें हैं वो लेकर जाइएगा एंड भर भर के सनस्क्रीन लगाओ, बहुत सारा पानी पियो, स्ट्रे हाइड्रेटेड, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह अपने साथ रखो, यू नो ऐसे फ्रूट्स खाओ जिसमें बहुत सारा वाटर कंटेन है। जो खाना आप खा रहे हैं इट शुड बी वेरी यू नो मिनिमल ऑयल अगर हो सके तो यूज करिए क्योंकि उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। एंड एज आई कीप सेइंग कि अगर कहीं से ऑर्डर करें तो उसे तुरंत खाएं, उसे रख के उसका इंतजार ना करें। यहाँ पे मुझे आसमा का भी मैसेज आया हुआ है, उनका भी बुरा हाल हो रखा है, शी इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस यू नो वेदर और थोड़ा पेट नाजुक हो चुका है उनका, पानी पी पी के परेशान हो गई है बट स्टिल यू नो इट इज नॉट वर्किंग एज सच। तो प्लीज अपना ख्याल रखें एंड आसमा गेट इल सून डार्लिंग, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में लक्ष्य मूवी से। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है तो बस हाँ बोल देना है, ठीक है, आर्ग्यू नहीं करनी होती इसके आगे। स्टे ट्यून्ड एनजीओ बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज, ऑलिव रिचार्ज,
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर, जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

तनिषा गोरी तेरे प्यार में मूवी से दिल डफर और करेक्ट एकदम गाना है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑलवी चार चल रहे हैं यहाँ पर। और भाई कार्तिक कैलेंडर ने जून के जितने भी इवेंट्स होने वाले लाइनअप जो है वो लॉन्च कर दिया है अंडर दी हाला समर कैंपेन। यस, और बहुत सारी स्पोर्ट्स एग्जिबिशंस, कल्चरल इवेंट्स और फैमिली एंटरटेनमेंट, अरे सब कुछ मिलने वाला है। आपको बता दूँ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। सो सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है वो है डायमंड लीग एथलेटिक्स चैंपियनशिप। यस, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स आएंगे कतर में, कंफ्यूजन हो गया था माफ कीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट प्रोजेक्ट कतर इज देयर, यू नो, बिजनेस और ट्रेड एग्जिबिशंस में कतर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्जिबिशन, कतर आउटलेट एग्जिबिशन, दोहा समर ट्रेड फेयर एंड समर स्प्लैश चल रहा है मरियल वाटर पार्क पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं भाई, बहुत फन है। अगर वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो जल्दी से जाइए हमारे सोशल मीडिया पे और चेकआउट कीजिए। And those who love theater, Disney's Little Mermaid is being presented by Doha Players from June 4th to 20th. And Qatar Museums bhi bahut sari exhibitions host kar raha hai. 3-2-1 Olympic and Sports Museum mein bhi bahut sari cheeze aur exhibitions host ho rahi hai. So sab kuch check out kar sakte hain. June is full of amazing things. Aur jo bhi weekends wagera aapko plan karne hai, is calendar ke according bindas kar lo yaar. Aur baaki हर टाइम रेडियो ऑलिव तो आपके साथ है ही। जी हाँ, सेंडिंग देयर एंड ओनली ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Shreya Ghoshal ki awaaz mein Ghoomar from the movie Padmavat. And right now we're going to talk about five laws, you know, जो कि यूनिवर्सल हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं लाइफ में फील किए हैं. और आपने मुझे, जब मैं ये पांचों बता दूंगी उसके बाद बताना है कि कौन सा वाला आपने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द मर्फीज लॉ, जो कहता है कि तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरोगे ना कि ये ना हो, उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. ये तो बहुत जोर से एक्सपीरियंस किया है. सेकेंड इज किडलिंस लॉ. सो व्हेन वी से ना कि दिमाग में अगर बहुत केओस हो गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, सॉर्ट नहीं हो रही हैं चीजें, तो राइट इट. जर्नलिंग के लिए जो कहते हैं वो किडलिंस लॉ से आता है. जब आप उसे लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखेंगे, तो आधी तो वो वहीं सॉल्व हो जाती है. यू रियलाइज दैट इट इज नॉट सच अ बिग डील. एंड द थर्ड वन इज द विल्सन्स लॉ. व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग न्यू और वी गो टू लर्न समथिंग न्यू, कोई नया ऑफिस स्पेस ज्वाइन किया है, तो पुराने जो बिलीव्स हैं उन्हें थोड़ा सा साइड में रखना होगा. जो चीजें पहले सीख चुके हैं उन्हें थोड़ा साइड में रखना होगा, क्योंकि आप नई जगह जा रहे हैं, तो वहां का कल्चर क्या है, वहां काम करने का तरीका क्या है, वो सब आपको सीखना होगा. तो इसके लिए आपको आपका बिलीफ और आपका ईगो दोनों साइड में रखना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल. एंड द फोर्थ वन इज फॉकलैंड्स लॉ. सो कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि मुझे इमीडिएटली चीजें डिसाइड करनी है. नहीं, पॉन्डर ओवर इट, यू नो, उसके साथ बैठो थोड़ी देर उस थॉट के साथ, एंड डिसाइड करो कि वेदर अभी इस पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं, या फिर ये बाद की प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम नहीं भी है, एट टाइम्स यू नो हम उसके बारे में पैनिक करके खुद ही प्रॉब्लम बना देते हैं. एंड द फिफ्थ इज गिलबर्ट्स लॉ. व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग न्यू, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई भी आप काम कर रहे हैं, नोबडी कम्स एंड टेल्स यू कि यू नो दीज आर द डायरेक्शंस, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट. सो ऑल दीज फाइव लॉज विच वी हैव एक्सपीरियंसड इन आर लाइव्स वेरी ऑफन, तो सबसे ज्यादा कौन सा वाला आपने एक्सपीरियंस किया, ये मैं जानना चाहूंगी. वेदर इट्स मर्फीज, किडलिंस, विल्सन्स, फॉकलैंड्स और गिलबर्ट्स लॉ. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: शालमली खुलगड़ की आवाज में शकजादे से परेशान, इस मौसम ने इस गर्मी ने परेशान कर दिया भाई साहब। लेकिन एक बहुत बढ़िया मेमोरी आई मुझे इस मूवी का, जैसे ही नाम लिया बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज और बंक मार के गई थी मैं ये मूवी देखने अपनी फ्रेंड के साथ, और हम पापा के ऑफिस के सामने से निकल रहे हैं, आप गट्स देख रहे हो, और बढ़िया निकल गए। जैसे ही थिएटर पहुंचे पापा का कॉल आया, बेटा कहाँ हो तुम? तो आई वॉज लाइक क्या हुआ पापा? क्योंकि अगर मैंने जवाब दे दिया और मैंने कह दिया कॉलेज तो बेटा पिटाई पक्की। लेकिन पापा ने कहा अरे नहीं, आई सॉ यू इधर से गुजरी थी तुम। मैं कहा हाँ वो अंशिता, माय फ्रेंड्स नेम वाज अंशिता, एंड आई वाज लाइक हाँ उसका घर वहाँ पर है ना, हमें एक नोटबुक भूल गए थे, वो लेने आए हैं, बस वापस ही जा रहे हैं। देन वी मेड श्योर कि जब हम मूवी से वापस जा रहे हैं तो हम दूसरे रास्ते से जाएं, एंड बट झूठ बोला नहीं जा रहा था ज़्यादा देर, तो घर जाके मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैं ना आज बंक करके मूवी देखने गई थी। तो डांट तो पड़ी पर शाबाशी भी मिली कि बेटा झूठ नहीं बोला, वेरी गुड, वेल डन।
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
0: सो आज का जो वर्ड है वो हम सब पे अप्लाई होता है वीकेंड्स पे स्पेशली, और मे बी यू नो ऑफिस से निकलने वाले टाइम पे जब दिख रहा है कि बॉस हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, कोई काम दे देगा ऐसा दिख रहा है उसकी शक्ल से, तो हम हो जाते हैं वहां से स्किडाडल। यस, सो द स्पेलिंग इज SKEDADDLE एंड द वर्ड इज स्किडाडल, जिसका मतलब है एकदम फटाफट से भाग के निकल जाना कहीं से भी, यू नो लिविंग इन हरी एंड रश। एंड थर्सडेज को तो मैं यही करती हूँ, फटाफट से जैसे ही मेरा टाइम खत्म होता है भागती हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई वीकेंड है। एंड रेस्ट ऑफ द डेज जो मैंने सिनेरियो बताया कि अगर आपको दिख रहा है कि बॉस आ रहा है आपकी तरफ, तो बेटा स्किडाडल हो जाना ही बेटर ऑप्शन है।

You're listening to Radio Olive on 6.3 FM. Tarisha, आपके साथ Olive Jaw चल रहे हैं यहाँ पर और Wacky Wisdom में आज हम बात करने वाले हैं keyboards की. So we all have noticed that हर हमारे डिवाइस में QWERTY कीपैड ही होता है ना. हर कीबोर्ड में, हमारे फ़ोन में भी इट इज़ QWERTY. सो उसके पीछे क्या रीज़न है, कहाँ से आया है, उस पर थोड़ी सी जानकारी मिली है मुझे, तो मैंने कहा यार शेयर करना बनता है, ये तो कमाल की चीज़ है. सो इनिशियली जब टाइपराइटर्स बने थे तो ये रूमर थी कि वो जम्बल्ड जो इस पे कीबोर्ड है, लाइक द कीज आर डिफरेंट, इट इज़ नॉट इन द सीक्वेंस, ए बी सी डी एफ जी वाला सीक्वेंस नहीं फॉलो किया है, बिकॉज वो जो कीज हैं जब हम फास्ट फास्ट टाइप करते हैं तो वो अटक जाती है, इट इज़ नॉट एबल टू टाइप प्रॉपरली. बट नो, दैट्स जस्ट अ रूमर, ऐसा कुछ नहीं है. वो कीज़ एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फास्ट टाइपिंग में. सो जो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कीबोर्ड यूज़ किया या टाइपराइटर यूज़ किया, दोज वर नॉट ऑफिस गोअर्स, यू नो, दे वर एक्चुअली टेलीग्राफ ऑपरेटर्स. सो वो बैठ के मॉर्स कोड सुनकर उसे टाइप करने की कोशिश कर रहे थे, उसे डीकोड करने की कोशिश कर रहे थे. सो अब अमेरिकन लेटर्स के साथ प्रॉब्लम ये था, प्रोनंसिएशन बेसिकली, यू नो, कुछ लेटर्स एक जैसे ही साउंड कर रहे थे. सो वहां पर चीजें हो जा रही थी गड़बड़. सो द गाय हु इन्वेंटेड द टाइपराइटर शोल्स, उसे कहा गया कि यू नो, एस जी और ई, इन तीनों को आसपास ही रखो, सो दैट जब हमें ऐसे वर्ड्स जो ऐसे लेटर्स जो कि एक जैसे साउंड कर रहे हैं वो सुनाई दे रहे हैं, तो हम तीनों को प्रेस करके या टाइप करके ये फिगर आउट कर सकें कि कौन सा सही वाला. एंड दैट वाज द रीजन ऑल द कीज आर सो शफल्ड, इट इज नॉट इन अ सीक्वेंस. बाय द वे, इन 1888 देयर वाज अ गाय कॉल्ड मैगवरीन एंड उसने चैलेंज किया पब्लिक शोडाउन के लिए, यू नो, फास्टेस्ट टाइपिंग के लिए, एंड ही यूज द QWERTY कीपैड जो हम अभी यूज कर रहे हैं. एंड देयर वाज अनदर गाय हु पार्टिसिपेटेड इन दैट, उसने कोई और कीबोर्ड यूज किया था. एंड दिस मैगवायर गाय, भाई इतना क्रेजी स्पीड से उसने बीट किया है ना दैट अदर गाय को, दैट्स व्हाई दिस QWERTY कीपैड इज बीइंग यूज्ड यूनिवर्सली, बिकॉज यू कैन टाइप फास्टर विद दिस वन. एंड हमेशा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता था यार कि ये इतने जंबल्ड क्यों है, किसने डिसाइड किया कि ये ऐसे बनना चाहिए. नाउ वी नो. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Anisha.
1: You're listening to Radio All of 106.3 FM. Band ki dukaan Sukhwinder Singh aur Rekha Bhardwaj ke awaaz mein aur Romeo se suna aapne. Aur Olive Recharge mein waqt kis cheez ka ho gaya meri jaan?
2: Lame jams.
1: Ka waqt ho gaya aur aaj ka sawal hai ki Varun Dhawan ki jo mummy ji hain, mata ji hain, unhe hum kya bolenge? Auntie nahi bolenge, please. Varun Dhawan ki mummy ko hum kya बोलेंगे और इन जनरल क्या बोल सकते हैं? उनका नाम गूगल से देख के मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जरा सोचो, इट इज लेम क्वेश्चन, तो इसका लेम ही जवाब मिलेगा और आधा जवाब तो इस सवाल के अंदर ही है. वरुण धवन की मम्मी को, माँ को क्या बोलेंगे? 3311 1063 पर फटाफट से मैसेज कीजिए और बताइए, या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. सेंडिंग ऊंचा लंबा फॉरएवर, क्यों किया ये आई डोंट नो, बट एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.8 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: राघव चैतन्य की आवाज में दिल खा किया फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन द नो ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑलिव रिकॉर्ड चल रहा है यहाँ पर और मैंने सवाल पूछा था कि वरुण धवन की माताश्री को, माता को, मम्मी को हम क्या बोलेंगे, आंटी, उनका नाम, ये सब नहीं बोलने का है। आप लेम क्वेश्चन को लेम लेंस से देखिए, ठीक है, और लेम जवाब ढूंढ के मुझे बताइए वरुण धवन की मम्मी को क्या बोलेंगे। 3311063 पर मैसेज कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं 4444106 3 पर। एक हिंट दे देती हूँ, जो वर्ड निकल के आ रहा है ना उनकी मम्मी को बोलने के लिए, वो एक्चुअली एक एक्टर का नाम भी है। तो अब इससे ज्यादा तो क्या ही बता सकती हूँ मैं। चलो जल्दी से बताओ, मैसेज करो और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास वीजन।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Darisha आपके साथ Olive Radio चल रहा है यहाँ पर. मजबूर सुना आपने जो कि Instagram पे तो काफी ही सुन लिया होगा. लेम जेम्स का आज का सवाल था कि वरुण धवन की जो माताश्री हैं, मम्मी हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे. सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स ओवर हियर. इनिशियली तो नहीं समझ रहे थे लोग आंटी, और उनका नाम लिख के भेज रहे थे. तो दीज वर नॉट द आंसर्स. देन आई टोल्ड देम कि यू नो एक एक्टर का नाम भी है ये, अगर आप ठीक से पता कर पाए तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो एक एक्टर का नाम है. एंड यस, वी हैव गॉट द आंसर फाइनली. एंड द करेक्ट आंसर इज
1: वरुण धवन की माँ का नाम हम बोलेंगे माधवन, यानी धवन की माँ माधवन.
0: एकदम करेक्ट. इरफान जी ने दिया है आंसर, और बाकी और भी बहुत सारे लोगों ने माधवन ही आंसर दिया है. थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय लिवनेस, और मेरा थर्सडे और भी ब्राइटर बनाने के लिए शुक्रिया. फिलहाल भेजिए डिस्को सॉन्ग, एंजॉय कीजिएगा. स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज,
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. खड़के गिलासी from the movie जब्बरिया जोड़ी सुना आपने. और भाई वक्त हो चुका है मेरे जाने का. अब मिलते हैं सैटरडे दोपहर 2 बजे. तब तक आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल और अपना वीकेंड बहुत बढ़िया तरीके से इंजॉय करना है. किसी चीज का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और जो भी काम का टेंशन होगा ना वो हम वीक पे आकर देखेंगे. ठीक है, वीकेंड बढ़िया इंजॉय करो. साथ में डू नॉट फॉरगेट टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ. ठीक है, वो तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज नॉन नेगोशिएबल. सैटरडे आके आई एम गोना आस्क यू व्हेदर यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ और नॉट. और इफ यू हैवंट फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया येट वो भी कर लो यार. और सुनते रहो रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास मेरी जान. रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

ओफो। इसे इसे डांट के भगाओ। ओफो। सीने से लगाओ। देखो यार, एक नंबर गाने आप लोगों के लिए सेट करके रखे हैं। वाइब थोड़ी सी और हाई है क्योंकि इट्स वीकेंड, कल छुट्टी, अगर आपकी सैटरडे भी छुट्टी है तो और भी लंबी छुट्टी। और बताओ क्या हाल चाल है, कैसा रहा आपका आज का दिन? बिल्कुल चार घंटे अपने होने वाले, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं, तो ये गोभी जैसा मुंह मत बना के रखो, स्माइल करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस एंड कैसा रहा आपका दिन वो भी मुझे भेज दो। 3311106।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shahrukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Arshan Vasi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ.
10: This hour is brought to you by
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: देखो जी, कोई आपको शाबाशी नहीं देने वाला कि इतनी धूप में काम कर रहे हो, इतनी धूप में बाहर निकले हो, अगर अवॉइड कर सकते हो तो दोस्तों कर लो यार। भाई साहब, मौसम के हाल हम सबको पता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो अभी क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 43 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। ह्यूमिडिटी 13% है एंड विंड जो है 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। दो ब्रीजी है, ठीक है, सनी स्काइज हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर इसका 45 तक आज जो है वो गया है। सो ये है मौसम के हाल और हाइड्रेट योरसेल्फ। यार हम मौसम को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ी अपनी आदतें बदल सकते हैं, वो जरूर आप कर लीजिएगा। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव का और कहते रहिए जियो बिंदास, हैप्पी वीकेंड।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: वाली कौन है
1: सिमरन कौर
0: चालो वाली कौन है वो
1: अभी तक नहीं पता लगा आपके साथ ये जो आईफोन यूजर्स हैं ना उनको मतलब मुझे भी और आप लोगों को भी पता नहीं कि अपने आईफोन में इतनी सारी चीजें हैं जिसमें अगर आप कुछ चेंजेस कर लेंगे तो आपका फोन जो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। टेक्स्ट की अगर बात करें अगर आप बोल्ड टेक्स्ट अपने फोन में करना चाहते हो तो मेरे साथ साथ अभी एक काम करो आपका आईफोन आपके पास में है आप सेटिंग्स में जाओ ठीक है सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाओ ठीक है उसके बाद वहां पर क्लिक करो वहां पर आपको दिखने वाला है डिस्प्ले टेक्स्ट साइज। डिस्प्ले टेक्स्ट साइज में सबसे ऊपर लिखा होगा बोल्ड टेक्स्ट उसको ऑन कर दो और उसके बाद जो है वो आप अपने फोन में देखोगे कि थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे और भी ज्यादा क्यूट हो जाएंगे वो ऐसा नहीं कि बड़े हो जाएंगे वो बोल्ड हो जाएंगे काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। मैंने आज ये सेटिंग खुद करके देखी है उसके साथ साथ एक लार्जर टेक्स्ट वाला भी ऑप्शन है उसे चाहे तो आप ऑन कर सकते हो टेक्स्ट लार्जर जो है वो उसमें हो सकते हैं एनी टाइम यू कैन ऑफ। सो या ये वाली सेटिंग आज मैंने मेरे फोन में की तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता देती हूँ।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव. सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: ਹਾਂਜੀ घड़ी पे हो चुके हैं। अगर दुनिया कहती है तो बोलो ओके।
1: गलत मेरी बातें
0: क्योंकि दुनिया ने आपको वैसे भी गलत बोलना है। अगर दुनिया का अपना तरीका होता है सोचने का। ये चार लोग हैं जो कहते हैं कहने दीजिए, और चार लोगों के बीच में आप भी चौथे लोग बन जाइए, कोई टेंशन नहीं है यार। लाइफ अपने तरीके से काटिए और वीकेंड भी अपने तरीके से काटिए। हैप्पी वीकेंड। आप लोगों के वीकेंड के क्या प्लान है मुझे बताइएगा, क्या करने वाले हैं। और वीकेंड के टाइम पे ये भी होता है कि यार अरे यार वो गाना याद आ रहा है, मेरे को वो गाना सुनना है। तो कोई अगर गाना है अगर आपको सुनना है तो हो सकता है किसी हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं उनके हिसाब से कोई गाना अगर वो सुनना चाह रहे हैं, जो वीकेंड के हिसाब से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो गाना मैं आप लोगों के लिए प्ले कर दूं, है ना। सो आपको क्या करना है, वो गाना गा के मुझे जो है वो भेजना है 3311063 पे वॉइस नोट भेजिए और बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। लेकिन भैया तुम तो ठहरे परदेसी, नहीं चलेगा, दर्द नहीं चाहिए हमको इस वीकेंड में, जिंदगी आगे कम क्या है क्या 3311063 पे

0: Radio Olive, your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल. द बेस्ट सीट इज इन योर होम. स्ट्रीम द फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऑन टॉट विद तालबक प्रो ओनली फॉर 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.

0: हाँ जी जैस्मीन, जैस्मिन सैंडलेस जो है ना बड़ी बोल्ड दिखती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बढ़िया यू नो उनकी आवाज है, बढ़िया इंसान भी हैं, लेकिन ना मैंने उनकी ना रीसेंट इंटरव्यूज, मतलब एक डेढ़ साल से मैंने उनकी रीसेंट इंटरव्यूज या फिर उनके जो लाइव पे हो जाती है, एक चीज नोटिस की है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, बहुत जल्दी रो पड़ती है। मतलब अगर उनकी कोई भी वीडियो, चाहे वो लाइव शो कर रही है उसमें भी वो जरूर रो देती है, इंटरव्यू भी देखो उसमें भी वो रो देती है। पता नहीं रिसेंटली ओवर इमोशनल जो है वो होगी, थोड़ी सी चीज होती है वो बहुत ज्यादा रो देती है। एक चीज मुझे एक्सपेक्टेड रहती है कि जहां पे भी हैं थोड़ा तो रोना जरूर आएगा। ये पता नहीं, शायद हो सकता है इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देख ली और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, उसके पीछे रीजन क्या है वो नहीं है, बट यस मैंने ये चीज नोटिस की है। और आप लोगों के सॉन्ग रिक्वेस्ट करने के सिलसिले जो है वो चल रहे हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? ठीक है,
0: गुड इवनिंग है जी।
1: अच्छा एक गाने की रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा गा के मैं बताता हूँ,
0: प्लीज गाइए
1: अगर हो सकता है तो।

लेट मी टेल यू, बहुत खूबसूरत गाया यार. इसका ओरिजिनल गाना भी है, बट अभी मेरे पास वो ओरिजिनल नहीं है. ये आतिफ असलम वाला गाना है, एंजॉय करिए.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान.
6: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आजे
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: This hour is brought to you by
1: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: boy.
1: Boy, boy, oi, my Charlie. Tune dil ke baaze maare.
0: And ji, oi, boy, oi, boy, Charlie. Thank you so much, yaar. Aap sabke messages aa rahe hain. Name game bhi agle ghante jo hai hum khelne wale hain. So, weekend ki baat kare. Abhi main thodi der pehle Sudev se baat kar rahi thi. Maine bola, yaar, jab weekend aata hai, to weekend pe sab apna apna apne apne tarike se apne weekend ko, you know, spend kar raha, you know, karte hain. Lekin usme se ek cheez hoti hai, khana. सो वीकेंड पे सबका अपना अपना एक कंफर्ट मील होता है, चाहे वो उसको कुक करें, चाहे वो बाहर से ऑर्डर करें. तो उसने मुझे बोला कि उसका ये सीन है कि वो हमारा जो सुदेव है ना, वो ऐसा एडजस्ट करने वाला बंदा है कि आप उसको ब्रेकफास्ट में राइस, मतलब राइस भी दे देंगे ना उसके साथ, दाल के साथ, वो खा लेगा. उसके खाने को लेके जो है वो ऐसा नखरे वखरे नहीं है उसके, है ना. सो लेकिन कुछ लोगों का होता है कि यार जब वो अपने वीकेंड पे उठे, उनका जो पहला मील है या सेकंड मील है, किस तरीके से वो खाने वाले. फॉर मी खाने को लेके थोड़े से मेरे नखरे हैं, है ना. सो मेरा ये है कि मेरे को शुरू से, ऑफ कोर्स बचपन से मैं परांठे, छोले भटूरे, ये सारी चीजें, ये तो हमारे खून में है ही, ये हमने खाया ही है. लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए, पिछले कुछ सालों से मेरा ऐसा सिस्टम बन गया है कि मुझे जब मैं वीकेंड पे उठूं तो मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है. पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, हैश ब्राउन एंड उसके साथ ऑमलेट, यू नो, ऐसा ब्राउन ब्रेड एंड ऑल, फ्रूट जैम, ये ऐसे वाले ब्रेकफास्ट अगर मेरे को मिल जाए, सो मेरे को लगता है कि मेरा वीकेंड जो है मस्त हो गया. नॉर्मली फटाफट हर रोज फटाफट से खाते हैं, जो भी है खा लिया, लेकिन वीकेंड पे मुझे मेरा कंफर्ट मिले इंग्लिश ब्रेकफास्ट. तो आपका क्या है, 3311063 पे बताओ यार.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Al Khol.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on TOT with Talabat Pro. Only for 360 riyal instead of 849 riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: सीख ले।
1: रेडियो ऑलिव पे, रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे,
2: स्टोरी ऑफ द डे।
3: अगर नेचर बिल भेजना शुरू कर देना, फ्रेश एयर आउट ऑफ स्टॉक, क्लीन वाटर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बर्ड्स की आवाज नॉट अवेलेबल, तब शायद हमें समझ आए कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें कभी खरीदी नहीं जा सकती। इस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे नेचर को सिर्फ रिसोर्स मत समझिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्योंकि अर्थ हमारा एड्रेस नहीं, हमारा घर है। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Life 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव. सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: I'm the number one radio alert.
8: Olive Sonor Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.

0: ਗਾਣਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਵੀਕਐਂਡ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਮੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਜਬ ਆਪ ਮੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਬੜੀਆ ਸੀ ਮੂਵੀ, ਬੜੀਆ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੋ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੂੰ। ਗੁੱਲਕ ਦੇਖਾ ਹੈ ਆਪਨੇ? ਦੇਖੀਏ वो गुल्लक, जिन लोगों ने देखा उनको ऑलरेडी पता है, जिन्होंने नहीं देखा मैं आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा कन्विंस करती हूँ। देखो, वो जो एक 90s वाली लाइफ रहती थी, वो जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें रोज के टाइम पे जो रोज चीजें हैं, एक मिडिल क्लास ही फैमिली है जहां पर बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे काम करने हैं, दो लड़के हैं उनके भी पढ़ाई के ड्रीम्स हैं और करियर बनाने के ड्रीम्स हैं, पापा जो हैं वो इतना ज्यादा नहीं कमा रहे हैं लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सो बहुत ही मम्मी जो है, मम्मी का भी बड़ा क्यूट रोल है। So, गुल्लक सीजन 5 जो है वो कल रिलीज हो रहा है, होपफुली आज रात को जो है वो आ जाएगा 9:30 बजे, क्योंकि इंडिया के 12 बज जाते हैं, लेकिन कल तो वो आ ही रहा है। सो मैं सुपर एक्साइटेड हूं इस गुल्लक सीजन के लिए, सीजन 5। अगर आपने देखा है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा था। बड़ी इजी पीजी स्टोरी चलती है यार, बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी रिलेटेबल जो है वो बहुत ज्यादा लगता है।
1: रेडियो

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.

0: V2 से आप ये गाना सुन रहे हैं। मधुबंती बाग जी, दिव्या कुमार। इस गाने के बारे में बात बताऊं ना, तो मैं देख रही थी ऑनलाइन, एक साल पहले गाना अपलोड हुआ था, 1 बिलियन व्यूज है इस गाने के, 1 बिलियन। ओ माय गॉड यार, मैं कहीं सुनियो के दादा की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। थोड़ी अब समझदारी की बात करें।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: अभी पढ़ी थी मैंने ये चीज, और एक्चुअली ये बात बहुत ज्यादा सही है। कभी कभी ना जब हम किसी के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो हमको उसका जो जवाब है वो ऑलरेडी पता होता है, बट हम उसको समहाउ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बट लाइफ में ना एक चीज सीखी है मैंने कि एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे ना, लाइफ उतनी ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगी। जितनी मतलब जितना आप अपने आप को ना इस सच्चाई से दूर भागते रहेंगे ना कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर आंसर दिस एंड दैट, है ना, बट वहां पे चीजें जो है अटकती है, आपकी ग्रोथ भी रुकी रहती है, आपकी मेंटल कंडीशन की धज्जियां उड़ती हैं। सो अलग से, सो अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि यार जवाब आपको ऑलरेडी पता है, तो क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम यार, आगे बढ़ो लाइफ में, आगे जिंदगी जो है वो बड़ी अच्छी है। तो चक्को फटे, सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबाकियों के साथ देखें हर मैच लाइव. सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: हाय, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो
4: ओलिव 106.3. रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: और ये सिमरन राज के ड्रीम्स देखती हुई। फिल्म में तो मिल जाता है, असल जिंदगी में थोड़ा बढ़िया वाला राज मिलना मुश्किल होता है यार। वो वाला राज जो बाबूजी की मार भी खा ले यार। मैं कहीं सुनी हो कितना देखी। हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। चलो फिर सीखते हैं। जेंजी एक स्लैंग जो है वो यूज करते हैं, जो है फेस कार्ड। फेस कार्ड उन लोगों के लिए बोला जाता है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब उनका फेस जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। लाइक फेस कार्ड नेवर डिक्लाइंस। सो या नेक्स्ट टाइम अगर कोई ये वर्ड यूज करता है तो उसका मतलब ये है। मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखिए। 7:17 और 55 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। चको फिर अगला गाना जिहड़ा हैगा, जे तुहानू एनर्जी दी जरूरत है अपनी लाइफ दे विच, और वीकेंड पे अज पूरा दिन अगर आपने सुबह से काम किया है और शाम को आपको लग रहा है नहीं यार बाहर जाने की या वीकेंड को एंजॉय करने की थोड़ी एनर्जी की कमी लग रही है, तो अगला गाना आप में भर देगा, फिर आपको मजे आ जाएंगे, ट्रस्ट मी।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaign. Campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: come and feel me.
1: Hanji?
0: Oh, feel me.
1: गोल्ड खरीदने की अगर आप सोच रहे हो, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो है आपके लिए लेकर आए हैं नए नए बढ़िया बढ़िया डेजलिंग डिजाइंस अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे आपने कहीं से भी खरीदा हो, बस आपको मेकिंग चार्जेस जो है वो पे करने हैं। लेकिन अभी गोल्ड खरीदने वालों के लिए एक और गुड न्यूज है कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप अप टू 50% गोल्ड प्राइजेस पर सेव कर सकते हो कतर में। सो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हो, नेम गेम लेके आऊंगी बस थोड़ी देर में, आप सबके नाम लेने वाली हूं, तो अपने नाम टाइप करके रखिए।

0: CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। 7:45 ऑलमोस्ट 45 सेकेंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं एंड बिना देर लगाए आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं तो ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है आप लोगों के नाम लेके। बिल्कुल। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मैं आपका नाम अभी मैं रेडियो पे बोलूं तो आपको मुझे अपना नाम अभी लिख के भेजना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के मुझे भेज दीजिए। चलिए मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। स्टैनली डिसूजा, फैजल, बिश्नु, जाकिर हुसैन, कायरा, नोआ, रिहान, सोहेल, जीन पॉल, जस्टिन, खेमराज, निसी, नागेश, रीमा, आयत, मोहम्मद, आमिर। क्विकली नाम लिख के भेजो 3311063 पर। रियाज बलोजी, क्या नाम है आपका, निरीहा, आई होप मैंने नाम सही बोला है। जीन पॉल, मैंने ऑलरेडी आपका नाम बोल दिया। हमजा जी, थैंक यू सो मच। अहमद जी, थैंक यू सो मच। जियाद जी, थैंक यू सो मच। माजिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मायरा जी, थैंक यू सो मच। अशफाक जी, थैंक यू सो मच। आयजा नवीद जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। जोया जी, थैंक यू सो मच। शफीक जी, थैंक यू सो मच। आयजा नवीद जी, ऑलरेडी मैंने आपका नाम बोल दिया। मुनीर जी, थैंक यू सो मच। अपने इमेजिनरी नेम मत बोलिएगा। रहमा जी, थैंक यू सो मच। निरूपा जी, थैंक यू सो मच। मयंक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सुमी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रीमा जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। विष्णु जी, थैंक यू सो मच। इंतशार आजम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिहाना जी, थैंक यू सो मच। शाइस्ता जी, थैंक यू सो मच। महरूज जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप बोलो थैंक यू, लिखो ना और अपना फेवरेट वाला इमोजी भेज दो। और जिनके नाम रह गए, मरवा जी आपका नाम भी ले लिया मैंने, जिनके नाम रह गए हैं आप इसे ट्राई कर लेंगे यार।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रन. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सी आर सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio Olive, I'm
3: the number one. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: एक चीज हमेशा बोली जाती है, कॉकरोच जब होता है ना तो लड़कियां कॉकरोच से बहुत ज्यादा डरती हैं, चीखे मार देती हैं। देखो यार, कॉकरोच से मुझे भी डर लगता है, मुझे वैसा डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि उड़ के ना ये कहीं पे भी बैठ जाएगा, और मतलब इतना तो पता है कि भाई वो हमसे बड़ा तो है नहीं, हमको काटेगा नहीं, है ना। सो कल क्या हुआ, मैंने पहले मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसे ही, मेरा जब सामना होगा तो मैं ऐसे ही बिहेव करने वाली हूँ। सो कल लिटरली मेरे ऊपर आके कॉकरोच बैठ गया, मैं कहीं पे थी और उड़ के वो बैठ गया, कहीं पे कोई कॉकरोच नहीं है, वो एक ही कॉकरोच था, कहीं से उड़ के आया और वो बैठ गया। मैंने बहुत कामली बिहेव किया और मैंने एकदम से झटका दिया और उसको भागा दिया टाइप्स। उसके बाद मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ, आई एम लाइक, अब तक लड़कियों के लिए बोला जाता है कि भाई लड़कियां कॉकरोच को देखे चिल्ला देती है, भाई मैंने खुद से मैनेज किया, मैंने एक भी चीख नहीं मारी, सच्ची बता रही हूँ। ओ माय गॉड, प्राउड ऑफ माय सेल्फ, मैं अपनी पीठ अपने आप थपथपा देती हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि कॉकरोच से डरते हैं, बताइएगा मुझे। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, खेते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: I'm the number one Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
7: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओली 106.3 FM।

पूछ रही हूँ ये वीकेंड का माहौल नहीं भी है ना तो भी मेरे गानों के साथ ये वीकेंड का माहौल जो है वो बन गया है। लेकिन अब वीकेंड पे जो भी आप फन कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे तो हमेशा इंसान रहता है। आपने अभी तक अगर हमारे रेडियो ऑलिव को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा रेडियो ऑलिव को इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे। कतर से जुड़ी हुई नई नई जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ बहुत सारे फन वीडियोज हम आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहते हैं, वो भी हो सकता है। एंड उसके साथ साथ एक चीज वो भी है कि जब भी कोई नया कॉन्टेस्ट या फिर कुछ नया इवेंट हम लेके आ रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम हमारे सोशल मीडिया पे देते हैं। सो रेडियो को तो आप सुनते ही हैं, रेडियो को सोशल मीडिया पे भी प्यार दीजिएगा एंड फॉलो करिएगा। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

the day. Story of the अगर नेचर बिल भेजना शुरू कर देना, फ्रेश एयर आउट ऑफ स्टॉक, क्लीन वाटर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बर्ड्स की आवाज नॉट अवेलेबल, तब शायद हमें समझ आए कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें कभी खरीदी नहीं जा सकती। इस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे नेचर को सिर्फ रिसोर्स मत समझिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्योंकि अर्थ हमारा एड्रेस नहीं, हमारा घर है। हैप्पी वर्ल्ड।

चलो जी अपना वीकेंड शुरू होता है अब। आपको ऑफिस के बारे में नहीं सोचना, आपको काम के बारे में नहीं सुना, और अगर आपका काम पेंडिंग पड़ा तो वीकेंड के टाइम पे सोचिएगा मत। कोई बात नहीं है यार, वापस से वीकेंड खत्म हो जाएगा, वही काम करना है एक हफ्ता, ठीक है। बट अपना ध्यान रखिएगा, हाइड्रेट योरसेल्फ, गर्मी बहुत है। अगर आपको बाहर निकलने वाला कोई काम इतना अर्जेंट नहीं है तो मत निकलिएगा, घर पे चिल कर लीजिएगा, या हाउस पार्टी कर लीजिएगा, या मॉल चले जाइएगा, या फिल्म देख लीजिएगा, ऐसी हरकतें कर लीजिएगा। अगर आप वाटर में भी हैं तो आप कोई भी वाटर पार्क में चले जाइएगा, ठीक है। तो सैटरडे शाम को 5 बजे होती है आपसे मुलाकात। इन शॉर्ट, खाने पीने रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: That was fast. Now here's another hit.

This is Club Olive on Radio Olive. Club Olive. Radio Olive 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

96.3 FM. You're listening to Club Olive.